ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। चेरी के देश से कार्यक्रम में स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रिला जैन का कोनिच्चिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिच्चिवा, नमस्कार।
2: सभी को रोहिणी रमन का भी नमस्कार। इस अंक में आपके पत्रों के उत्तर के साथ लेकर आए हैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता का भाग 2।

0: पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जो अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी और गहराई वाले किरदारों के लिए जाने जाते हैं।
1: बिहार दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पंकज जी 24 मार्च को जापान आए थे। पिछले अंक में हमने उनके साथ हुई भेंट वार्ता और प्रशंसकों के साथ साझा किए गए उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक निजी किस्से सुने थे। आइए उनके साथ भेंट वार्ता को आगे बढ़ाएं।
0: बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके गोपालगंज के बेलसाड़ से निकलकर पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा रंगमंच से शुरू की थी। पटना में रंगमंच करते हुए उन्होंने अपने हुनर को और तराशने का फैसला किया और भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाटक अकादमी में 3 साल तक पढ़ाई की।
2: लेकिन थिएटर में रुचि जागृत होने से पहले पंकज जी ने पटना में होटल प्रबंधन संस्थान से पढ़ाई की और फिर किसी होटल में काम भी किया। इसी बीच उनका रुझान थिएटर की तरफ होने लगा। जापान में उनके एक प्रशंसक का सवाल था कि आपको ये कब लगा कि अब पूरी तरह से रंगमंच से ही जुड़ना है? इस पर उन्होंने कहा,
3: मैं होटल में नौकरी कर रहा था, रात के ड्यूटी लगती थी 11 से सुबह 7 बजे तक। जब 6-8 महीना हो गया रात को जगना और सुबह दिन में सोना, तो मुझे लगा अब दिन वाला काम करना है। तो ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि मुझे एक दिन लगा कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है और कोई गो बैक नहीं है। ये धीरे धीरे धीरे धीरे हुआ कि यार मज़ा इस काम में आ रहा है तो यही करना है, ओवरनाइट नहीं हुआ है।
2: थिएटर करते हुए पंकज त्रिपाठी 1999 में पहली बार जापान आए थे। उस दौरान उन्हें जापानी अभिनेताओं और कलाकारों के साथ मिलकर नाटक करने का मौका मिला था और करीब 1 महीने तक यहाँ वर्कशॉप भी की थी। युवा पंकज के मन पर जापानी रहन-सहन का खासा प्रभाव पड़ा था। हमने उनसे पूछा कि उस पहली यात्रा ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया।
3: जब हम घूमते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग शहरों को देखते हैं, अलग अलग देशों को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक सिविक सेंस के मामले में टोक्यो बहुत, जापान बहुत आगे है। एक नागरिक जो है, मैं देखता हूँ कि यहाँ ऑफिस के आसपास के इलाके, ऑफिस के कर्मचारी टॉप बॉस से लेके और नीचे तक सब मिल के साथ में सफाई करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑफिस को या अपने घर के आसपास को भी साफ रखें। तो जो जो एक अनुशासन है यहाँ, वो हमारे लिए सीखने योग्य है। हम लोग हिंदुस्तान में उसमें थोड़े लैकिंग कर लेते हैं। हमें लगता है ये उसकी ड्यूटी है, वो करेगा। अगर हमें दिख रहा है कुछ वहाँ गंदा है, तो हम भी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो एक नागरिक जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए, वो यहाँ बहुत प्रखर रूप से दिखती है।
2: पंकज जी फिल्मों से जुड़े हैं, तो जाहिर है कोई पसंदीदा जापानी फिल्म या निर्देशक भी हो सकते हैं। लेकिन उनके जवाब ने हमें थोड़ा अचंभित कर दिया। वे कहते हैं,
3: नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। मैं ज़्यादातर लाइव परफॉर्मेंस ही देखता हूँ। तो मैं हिंदी सिनेमा भी बहुत कम देखा हूँ, 40-50 देखा होगा, 60 मैक्सिमम। तो मुझे सिनेमा का यहाँ एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। बाकी खाने का है, कल्चर का है, परफॉर्मिंग आर्ट का है, बट सिनेमा का, जापानी सिनेमा का एक्सपोजर नहीं है मेरे पास।
2: पंकज जी ने बताया कि उन्होंने जापान की परफॉर्मिंग आर्ट देखी है और जापान की कई रंगमंच कलाएं भी हैं, जैसे राकुगो या काबुकी। हमने उनसे सवाल किया कि क्या इनमें से कोई देखने का मौका मिला, तो वे बोले,
3: पहले काबुकी देखा हूँ, मैंने काबुकी का वर्कशॉप भी किया हुआ है। कल काबुकी थिएटर मुझे दिखा बाहर से, वो सेंट्रल टोक्यो में, तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो मेरी पत्नी नहीं देखी है, तो उन्हें दिखाऊंगा। बाकी मैं यहाँ के कलाओं के बारे में काफ़ी अध्ययन किया हूँ, देखा हूँ। हमारे NSD में जब हम पढ़ते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, तो वहाँ भी कल्चरल एक्सचेंज के तहत काबुकी एक्सपर्ट आते थे एक वर्कशॉप लेने के लिए। तो वो सब किया है, और ये बहुत अच्छी बात है जापान में कि जितना मॉडर्न है, टेक्निकली विकसित है, उतना ही ये लोग अपनी संस्कृति को, अपनी कलाओं को, लोक कलाओं को प्रिजर्व करके बचा के रखे हैं और अगली जनरेशन को दे रहे हैं। तो फिर तो वो फ्लरिश करेंगे ही वो कलाएं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलाओं को बचा के रखें, उनको अगली पीढ़ी को दें।
2: काबुकी जापान की 400 साल पुरानी रंगमंच कला है, जिसमें नाटक, संगीत और नृत्य सभी कलाओं का समावेश है। पंकज जी से हमने पूछा कि काबुकी में ऐसी क्या खास बात है जिसने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। खास तौर से जिन लोगों ने कभी काबुकी नहीं देखी वे जानना चाहेंगे कि इसमें उन्हें क्या पसंद आया।
3: बिल्कुल, आपके शहर में आपको जहाँ भी मौका मिले ज़रूर देखें काबुकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक प्राचीन परंपरा है यहाँ की। उसके मूवमेंट इतने डेलिकेट होते हैं और उसके कलाकार को ट्रेंड होने में, प्रिपेयर्ड परफॉर्म करने में काफ़ी साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि दो एक महीने की ट्रेनिंग में आप परफॉर्म करने लगो। तो जितना उसमें संतुलन और मूवमेंट के ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसमें ऑफकोर्स यहाँ की एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है वो, तो काबुकी एक्टर को ट्रेंड होने में, काबुकी परफॉर्मर को बहुत साल लगते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, भारत में भी ऐसी कलाएं हैं, दक्षिण भारत में मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुड़ियाट्टम, जिनको एक परफॉर्मर को ट्रेंड करने में, उसको स्टेज पे आने में 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो ये कलाएं हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाती हैं कि कैसे इवॉल्व होते हैं हम। तो कमाल का आर्ट है, आपको जब भी मौका लगे आपके शहर में कहीं भी काबुकी परफॉर्मेंस पता हो जरूर जाएं और देखें।
2: आज भारत में रंगमंच हो या जापान का काबुकी, लोगों की रुचि इन कलाओं में कम होती जा रही है। काबुकी कलाकारों का भी कहना है कि इसको जीवित रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इस बारे में हमने पंकज जी से उनकी राय जानी।
3: ऑडियंस अगर लाइव परफॉर्मेंस देखेगी ना, एक नई ऑडियंस, बहुत लोग हैं जो स्टेज में थिएटर में नहीं गए आज तक, और सिनेमा एक किस्म से जादू था, पर्दे पे एक दुनिया क्रिएट होती है और देखते हैं, पॉपुलर मीडियम है, एक सिनेमा बनेगा तो एक साथ 1000 जगहों पे देख सकते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस एक ही जगह जहाँ हो रहा है वहीं जाके देख सकते हैं उसका। तो एक समय आएगा जब ये स्क्रीन फटीग हो जाएगा, होने लगा है। आप कितना स्क्रीन में देखेंगे, इंटरटेनमेंट है, समाचार है, सोशल मीडिया है, फिल्में हैं, तो एक समय के बाद आदमी को रियल कनेक्शन चाहिए कि मैं कुछ लाइव देखूं, मैं जीवंत देखूं, मैं जो देख रहा हूं वो इसी समय घटित हो रहा है, वो 6 महीना घटित होके और उसको कैमरे में कैद करके नहीं दिखा जा रहा है। तो आने वाले समय में लाइव आर्ट लोग देखने जाएंगे और बहुत भीड़ होगी, और उसका सुख समझ में आएगा कि यार इसका आनंद क्या है। वो सजीव लाइव कनेक्शन अलग होता है ना, कि आपके सामने एक कलाकार परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई कैमरा नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, सही है तो वही है, गलतियां भी हो रही हैं तो आपके सामने हो रही हैं। तो स्क्रीन फटीग एक दिन आएगा और लोग वापस आ गया है। इनफैक्ट आप ब्रॉडवे जाके देखें जो होते हैं, वहाँ पर कितने महंगे टिकट हैं और हाउसफुल रहते हैं, महीनों तक टिकट नहीं मिलती है। तो मैंने खुद अभी एक प्ले प्रोड्यूस किया है मेरी पत्नी ने बॉम्बे में, लाइलाज, और उसके शोज हो रहे हैं। समय लगा, कभी उचित हुआ तो हम जापान भी आएंगे हिंदी ऑडियंस के लिए शो करने। 30 लोगों का ट्रूप है, लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव म्यूजिक है, लाइव गाते हैं, लाइव बजाते हैं म्यूजिशियन। तो लाइव आर्ट का कोई तुलना ही नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कहीं भी कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रही है थोड़ी प्रोफेशनल टीम की, आप जाएं देखें और आप उसके मुरीद हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे और आप बार बार देखेंगे।
2: उनके लिए कला के मायने क्या हैं? टोक्यो के एक प्रशंसक के सवाल पर पंकज जी ने कहा,
4: और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिसके भीतर कला है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टेज ही मिले। आर्टिस्टिक अप्रोच आप जीवन में भी रख सकते हैं, खाना बनाने में और खाना खाने में भी आर्ट हो सकता है। तो आर्ट के लिए, आर्ट कोई जीवन से बहुत अलग की चीज नहीं है, उसका अप्रोच, उसका सेंस आप लाइफ में भी रख सकते हैं। और आर्ट का पर्पस ही है आदमी को अच्छा आदमी बनाना। आर्ट, पोएट्री, कल्चर, इनका क्या पर्पस है जीवन में? हम इंजीनियरिंग, मेडिकल का काम है जीवन को आसान बनाना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ से वहाँ जल्दी जाएंगे, मेडिसिन में डेवलप करेंगे तो हम बीमारियाँ दूर कर लेंगे, बट ये यहाँ से वहाँ जल्दी जाना और बीमारियों को भगाना किसके लिए? जीवन के लिए। फिर जीवन किसके लिए? आर्ट के लिए।
1: पंकज जी के साथ बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसमें हम उनके फिल्म करियर के बारे में जानेंगे। और अब समय हो चला है श्रोताओं को हमारी फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
5: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ झारखंड जमशेदपुर से चिन्मय महतो जी का। लिखा है, आओ पकाएं जापानी खाना में तेम्पुरा की बहुत ही सरल विधि और सहज उपाय बताने के लिए धन्यवाद। अब ये पकौड़े मैं स्वयं बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा, पर कहाँ तक सफल हो पाऊँगा पता नहीं। चिन्मय जी ने एक निजी उपलब्धि साझा करते हुए लिखा है, मेरे मिनी रेडियो संग्रहालय पर दिल्ली दूरदर्शन ने लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें मेरा साक्षात्कार भी लिया। मैंने रेडियो जापान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक रेडियो श्रोता होने पर इतना बड़ा सम्मान मिलना काफी गर्व की बात है।
1: चिन्मय जी, आप जैसे रेडियो प्रेमी श्रोता को ये सम्मान मिलना वाकई हमारे लिए भी गर्व और खुशी की बात है। और देखिए, बिहार आरा से रामकुमार नीरज जी का ये लंबा सा पत्र है। 19 अप्रैल को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता को अत्यंत सराहनीय कदम बताया है। आगे लिखा है, ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा और भारतीय कलाकारों की उपस्थिति दिखाई देती है, तो ये हम सभी हिंदी श्रोताओं के लिए गर्व का विषय बन जाता है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें पंकज त्रिपाठी जैसे सरल, प्रतिभाशाली और जमीन से जुड़े कलाकार के विचार सुनने का अवसर मिला। वे अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनकी भाषा, व्यवहार और व्यक्तित्व में जो सहजता है, वही उन्हें लाखों दिलों के करीब लाती है। रेडियो माध्यम पर उनकी आवाज सुनना श्रोताओं के लिए एक आत्मीय अनुभव रहा होगा।
0: लाइए आगे का हिस्सा मैं पढ़ लेती हूँ
1: जी।
0: लिखते हैं, यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि वे 24 मार्च को जापान स्थित बिहार फाउंडेशन के आमंत्रण पर जापान गए थे। यह केवल एक कलाकार की यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की प्रतिभा, भारतीय संस्कृति और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। बिहार से निकले कलाकार का जापान जैसे विकसित और अनुशासित देश में सम्मानित होना बताता है कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। यह बिहार के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का संदेश है कि मेहनत, धैर्य और लगन से विश्व स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है।
2: नीरज जी आगे लिखते हैं कि रेडियो जापान हिंदी सेवा ने इस इंटरव्यू को अपने कार्यक्रम में शामिल कर श्रोताओं की रुचि को समझने का परिचय दिया है। आज के समय में जब बहुत से रेडियो मंच केवल औपचारिक समाचारों तक सीमित हो जाते हैं, ऐसे में सांस्कृतिक, प्रेरणादायक और लोकप्रिय व्यक्तित्वों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ श्रोताओं को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। चेरी के देश से कार्यक्रम हमेशा से आत्मीयता और विविधता के लिए जाना जाता है और यह अंक उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है, एक श्रोता के रूप में मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम भारत और जापान के बीच मानवीय संबंधों को मजबूत करते हैं। इससे श्रोता केवल समाचार नहीं सुनते, बल्कि समाज, कला और संस्कृति की जीवंत धड़कन को महसूस करते हैं। कुल मिलाकर पंकज त्रिपाठी का ये साक्षात्कार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के लिए एक यादगार प्रस्तुति कहा जा सकता है। ये कार्यक्रम मनोरंजन, प्रेरणा और सांस्कृतिक संवाद का सुंदर संगम बनकर सामने आया।
2: नीरज जी, आपकी इस गहरी और विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हृदय से आभार। पंकज त्रिपाठी जी के साथ हुई भेंट वार्ता पर जयपुर से अंशुमन गुप्ता लिखते हैं, दिलचस्प साक्षात्कार, उनके जीवन के बारे में सुनना आनंददायक था।
0: इस भेंटवार्ता पर अनेक श्रोता मित्रों ने फेसबुक पर भी कमेंट किए हैं। प्रोमो वीडियो पर साधना गुप्ता लिखती हैं, बढ़िया भेंटवार्ता, उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। विजय कुमार ओझा ने दोनों को प्रणाम कहा है। उत्तराखंड से अनिल डोबरियाल पूछते हैं, क्या अब भी चेरी के देश से कार्यक्रम का प्रसारण होता है? मैं कभी रेडियो पर आपका कार्यक्रम सुनता था।
2: अनिल जी, चेरी के देश से कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार को अनवरत किया जाता है। हमारी वेबसाइट देखें, वहां भी ये एक सप्ताह तक उपलब्ध रहता है।
0: पंकज त्रिपाठी जी की भेंटवार्ता पर नेहा चुग ने फेसबुक पर लिखा है, उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा। मनीषा कुमार लिखती हैं, बहुत बढ़िया। और कुमकुम सरन ने भी इसे बहुत बढ़िया बताया। साथ ही लिखती हैं कि ये अच्छी बात है कि आपने बीच बीच में टोकने की बजाय पंकज जी को ही ज्यादा बोलने दिया, बहुत बढ़िया बोलते हैं, मजा आ गया।
1: मोनिता मिथा लिखती हैं, जापान की संस्कृति और परंपरा के बारे में पंकज जी के विचार जानकर आनंद आया। वहीं सूर्य नारायण बहादुर ने भी भेंटवार्ता को पसंद करते हुए लिखा है, जापान के बारे में उनकी पहले की यादें और अभी की आंखों देखी बातें बढ़िया लगी।
2: ओडिशा के सिंगा से सुरेश अग्रवाल जी का ये पत्र है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता के अंश सुनना निश्चय ही सुखद अनुभव रहा, लेकिन उनका सुझाव है कि इस प्रकार की भेंटवार्ताओं को शनिवार के प्रसारण में स्थान दिया जाए।
1: सुरेश जी, आप जैसे समर्पित श्रोता के सुझावों का स्वागत है, समय समय पर ऐसा किया भी जाता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी लिखते हैं, भारतीय सिनेमा जगत और टीवी की दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले पंकज जी मेरे भी फेवरेट हैं। उनके अभिनय की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आपने उनसे भेंटवार्ता करवाई, हृदय से आभारी हूँ। उनकी दूसरी जापान यात्रा इस बात का प्रमाण है कि वो हृदय से जापान वासियों को पसंद करते हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने साक्षात्कार में किया। उनके अनुभवों से ये फिर पुष्टि हुई कि जापानियों से अधिक विनम्र एवं मिलनसार विश्व में दूसरा कोई नहीं है। अनुशासित जीवन और अपनी सभ्यताओं को सजोए हुए देश के विकास में भूमिका निभाने वाले समस्त जापानियों को मेरा सलाम। जीवन में जब भी अवसर मिला जापान जरूर जाऊंगा।
2: सादिक आजमी साहब, जरूर आइए, जापान में आपका स्वागत है। और पंकज जी के साथ आज की भेंटवार्ता आप श्रोताओं को कैसी लगी जरूर बताइए, और पत्र लिखने के लिए लिंक कार्यक्रम के विवरण में शामिल है। लेकिन देखिए, फिलहाल घड़ी कर रही है इशारा कि जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और कामायनी सिंह को
0: और रोहिणी रमन को।
6: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। चेरी के देश से कार्यक्रम में स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रिला जैन का कोनिच्चिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिच्चिवा नमस्कार।
2: सभी को रोहिणी रमन का भी नमस्कार। इस अंक में आपके पत्रों के उत्तर के साथ लेकर आए हैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता का भाग 2।

0: पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जो अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी और गहराई वाले किरदारों के लिए जाने जाते हैं।
1: बिहार दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पंकज जी 24 मार्च को जापान आए थे। पिछले अंक में हमने उनके साथ हुई भेंट वार्ता और प्रशंसकों के साथ साझा किए गए उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक निजी किस्से सुने थे। आइए उनके साथ भेंट वार्ता को आगे बढ़ाएं।
0: बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके गोपालगंज के बेलसार से निकलकर पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा रंगमंच से शुरू की थी। पटना में रंगमंच करते हुए उन्होंने अपने हुनर को और तराशने का फैसला किया और भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाटक अकादमी में 3 साल तक पढ़ाई की।
2: लेकिन थिएटर में रुचि जागृत होने से पहले पंकज जी ने पटना में होटल प्रबंधन संस्थान से पढ़ाई की और फिर किसी होटल में काम भी किया। इसी बीच उनका रुझान थिएटर की तरफ होने लगा। जापान में उनके एक प्रशंसक का सवाल था कि आपको ये कब लगा कि अब पूरी तरह से रंगमंच से ही जुड़ना है? इस पर उन्होंने कहा,
3: मैं होटल में नौकरी कर रहा था, रात के ड्यूटी लगती थी 11 से सुबह 7 बजे तक। जब 6-8 महीना हो गया रात को जगना और सुबह दिन में सोना, तो मुझे लगा अब दिन वाला काम करना है। तो ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि मुझे एक दिन लगा कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है और कोई गो बैक नहीं है। ये धीरे धीरे धीरे धीरे हुआ कि यार मज़ा इस काम में आ रहा है तो यही करना है, ओवरनाइट नहीं हुआ है।
2: थिएटर करते हुए पंकज त्रिपाठी 1999 में पहली बार जापान आए थे। उस दौरान उन्हें जापानी अभिनेताओं और कलाकारों के साथ मिलकर नाटक करने का मौका मिला था और करीब 1 महीने तक यहाँ वर्कशॉप भी की थी। युवा पंकज के मन पर जापानी रहन सहन का खासा प्रभाव पड़ा था। हमने उनसे पूछा कि उस पहली यात्रा ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया।
4: जब हम घूमते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग शहरों को देखते हैं, अलग अलग देशों को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक सिविक सेंस के मामले में टोक्यो बहुत, जापान बहुत आगे है। एक नागरिक जो है, मैं देखता हूँ कि यहाँ ऑफिस के आसपास के इलाके, ऑफिस के कर्मचारी टॉप बॉस से लेकर और नीचे तक सब मिल के साथ में सफाई करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑफिस को या अपने घर के आसपास को भी साफ रखें। तो जो जो एक अनुशासन है यहाँ, वो हमारे लिए सीखने योग्य है। हम लोग हिंदुस्तान में उसमें थोड़े लैकिंग कर लेते हैं। हमें लगता है ये उसकी ड्यूटी है, वो करेगा। अगर हमें दिख रहा है कुछ वहाँ गंदा है तो हम भी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो एक नागरिक जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए, वो यहाँ बहुत प्रखर रूप से दिखती है।
2: पंकज जी फिल्मों से जुड़े हैं तो जाहिर है कोई पसंदीदा जापानी फिल्म या निर्देशक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जवाब ने हमें थोड़ा अचंभित कर दिया। वे कहते हैं,
4: नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मैं ज़्यादातर लाइव परफॉर्मेंस ही देखता हूँ। तो मैं हिंदी सिनेमा भी बहुत कम देखा हूँ, 40-50 देखा होगा, 60 मैक्सिमम। तो मुझे सिनेमा का यहाँ एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। बाकी खाने का है, कल्चर का है, परफॉर्मिंग आर्ट का है, बट सिनेमा का, जापानी सिनेमा का एक्सपोजर नहीं है मेरे पास।
2: पंकज जी ने बताया कि उन्होंने जापान की परफॉर्मिंग आर्ट देखी है और जापान की कई रंगमंच कलाएं भी हैं, जैसे राकुगो या काबुकी। हमने उनसे सवाल किया कि क्या इनमें से कोई देखने का मौका मिला, तो वे बोले,
4: पहले काबुकी देखा हूँ, मैंने काबुकी का वर्कशॉप भी किया हुआ है। कल काबुकी थिएटर मुझे दिखा बाहर से, वो सेंट्रल टोक्यो में, तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो मेरी पत्नी नहीं देखी है तो उन्हें दिखाऊंगा। बाकी मैं यहाँ के कलाओं के बारे में काफ़ी अध्ययन किया हूँ, देखा हूँ। हमारे NSD में जब हम पढ़ते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, तो वहाँ भी कल्चरल एक्सचेंज के तहत काबुकी एक्सपर्ट आते थे एक वर्कशॉप लेने के लिए, तो वो सब किया है। और ये बहुत अच्छी बात है जापान में कि जितना मॉडर्न है, टेक्निकली विकसित है, उतना ही ये लोग अपनी संस्कृति को, अपनी कलाओं को, लोक कलाओं को प्रिजर्व करके बचा के रखे हैं और अगली जनरेशन को दे रहे हैं। तो फिर तो वो फ्लरिश करेंगे ही वो कलाएं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलाओं को बचा के रखें, उनको अगली पीढ़ी को दें।
2: काबुकी जापान की 400 साल पुरानी रंगमंच कला है, जिसमें नाटक, संगीत और नृत्य सभी कलाओं का समावेश है। पंकज जी से हमने पूछा कि काबुकी में ऐसी क्या खास बात है जिसने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। खास तौर से जिन लोगों ने कभी काबुकी नहीं देखी वे जानना चाहेंगे कि इसमें उन्हें क्या पसंद आया।
4: बिल्कुल, आपके शहर में आपको जहाँ भी मौका मिले ज़रूर देखें काबुकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक प्राचीन परंपरा है यहाँ की। उसके मूवमेंट इतने डेलिकेट होते हैं और उसके कलाकार को ट्रेंड होने में, प्रिपेयर्ड परफॉर्म करने में काफ़ी साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि दो एक महीने की ट्रेनिंग में आप परफॉर्म करने लगो। तो जितना उसमें संतुलन और मूवमेंट के ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसमें ऑफकोर्स यहाँ की एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है वो, तो काबुकी एक्टर को ट्रेंड होने में, काबुकी परफॉर्मर को बहुत साल लगते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, भारत में भी ऐसी कलाएं हैं, दक्षिण भारत में मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुड़ियट्टम, जिनको एक परफॉर्मर को ट्रेंड करने में, उसको स्टेज पे आने में 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो ये कलाएं हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाती हैं कि कैसे इवॉल्व होते हैं हम। तो कमाल का आर्ट है, आपको जब भी मौका लगे आपके शहर में कहीं भी काबुकी परफॉर्मेंस पता हो जरूर जाएं और देखें।
2: आज भारत में रंगमंच हो या जापान का काबुकी, लोगों की रुचि इन कलाओं में कम होती जा रही है। काबुकी कलाकारों का भी कहना है कि इसको जीवित रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इस बारे में हमने पंकज जी से उनकी राय जानी।
4: ऑडियंस अगर लाइव परफॉर्मेंस देखेगी ना, एक नई ऑडियंस, बहुत लोग हैं जो स्टेज में थिएटर में नहीं गए हैं आज तक। और सिनेमा एक किस्म से जादू था, पर्दे पे एक दुनिया क्रिएट होती है और देखते हैं, पॉपुलर मीडियम है। एक सिनेमा बनेगा तो एक साथ 1000 जगहों पे देख सकते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस एक ही जगह जहाँ हो रहा है वहीं जाके देख सकते हैं उसका। तो एक समय आएगा जब ये स्क्रीन फटीग हो जाएगा, होने लगा है। आप कितना स्क्रीन में देखेंगे, इंटरटेनमेंट है, समाचार है, सोशल मीडिया है, फिल्में हैं। तो एक समय के बाद आदमी को रियल कनेक्शन चाहिए कि मैं कुछ लाइव देखूं, मैं जीवंत देखूं। मैं जो देख रहा हूं वो इसी समय घटित हो रहा है, वो 6 महीना घटित होके और उसको कैमरे में कैद करके नहीं दिखा जा रहा है। तो आने वाले समय में लाइव आर्ट लोग देखने जाएंगे और बहुत भीड़ होगी और उसका सुख समझ में आएगा कि यार इसका आनंद क्या है। वो सजीव लाइव कनेक्शन अलग होता है ना, कि आपके सामने एक कलाकार परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई कैमरा नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। सही है तो वही है, गलतियां भी हो रही हैं तो आपके सामने हो रही हैं। तो स्क्रीन फटीग एक दिन आएगा और लोग वापस आ गया है। इनफैक्ट आप ब्रॉडवे जाके देखें जो होते हैं, वहाँ पर कितने महंगे टिकट हैं और हाउसफुल रहते हैं, महीनों तक टिकट नहीं मिलती है। तो मैंने खुद अभी एक प्ले प्रोड्यूस किया है मेरी पत्नी ने बॉम्बे में, लाइलाज, और उसके शोज हो रहे हैं। समय लगा, कभी उचित हुआ तो हम जापान भी आएंगे हिंदी ऑडियंस के लिए शो करने। 30 लोगों का ट्रूप है, लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव म्यूजिक है, लाइव गाते हैं, लाइव बजाते हैं म्यूजिशियन। तो लाइव आर्ट का कोई तुलना ही नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कहीं भी कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रही है थोड़ी प्रोफेशनल टीम की, आप जाएं देखें और आप उसके मुरीद हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे और आप बार बार देखेंगे।
2: उनके लिए कला के मायने क्या हैं? टोक्यो के एक प्रशंसक के सवाल पर पंकज जी ने कहा,
5: और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिसके भीतर कला है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टेज ही मिले। आर्टिस्टिक अप्रोच आप जीवन में भी रख सकते हैं, खाना बनाने में और खाना खाने में भी आर्ट हो सकता है। तो आर्ट के लिए, आर्ट कोई जीवन से बहुत अलग की चीज नहीं है, उसका अप्रोच, उसका सेंस आप लाइफ में भी रख सकते हैं। और आर्ट का पर्पस ही है आदमी को अच्छा आदमी बनाना। आर्ट, पोएट्री, कल्चर, इनका क्या पर्पस है जीवन में? हम इंजीनियरिंग, मेडिकल का काम है जीवन को आसान बनाना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ से वहाँ जल्दी जाएंगे, मेडिसिन में डेवलप करेंगे तो हम बीमारियाँ दूर कर लेंगे। बट ये यहाँ से वहाँ जल्दी जाना और बीमारियों को भगाना किसके लिए? जीवन के लिए। फिर जीवन किसके लिए? आर्ट के लिए।
1: पंकज जी के साथ बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसमें हम उनके फिल्म करियर के बारे में जानेंगे। और अब समय हो चला है श्रोताओं को हमारी फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
6: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ झारखंड जमशेदपुर से चिन्मय महतो जी का। लिखा है, आओ पकाएं जापानी खाना में टेम्पुरा की बहुत ही सरल विधि और सहज उपाय बताने के लिए धन्यवाद। अब ये पकौड़े मैं स्वयं बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा, पर कहाँ तक सफल हो पाऊँगा पता नहीं। चिन्मय जी ने एक निजी उपलब्धि साझा करते हुए लिखा है, मेरे मिनी रेडियो संग्रहालय पर दिल्ली दूरदर्शन ने लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें मेरा साक्षात्कार भी लिया। मैंने रेडियो जापान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक रेडियो श्रोता होने पर इतना बड़ा सम्मान मिलना काफी गर्व की बात है।
1: चिन्मय जी, आप जैसे रेडियो प्रेमी श्रोता को ये सम्मान मिलना वाकई हमारे लिए भी गर्व और खुशी की बात है। और देखिए, बिहार आरा से रामकुमार नीरज जी का ये लंबा सा पत्र है। 19 अप्रैल को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता को अत्यंत सराहनीय कदम बताया है। आगे लिखा है, ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा और भारतीय कलाकारों की उपस्थिति दिखाई देती है, तो ये हम सभी हिंदी श्रोताओं के लिए गर्व का विषय बन जाता है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें पंकज त्रिपाठी जैसे सरल, प्रतिभाशाली और जमीन से जुड़े कलाकार के विचार सुनने का अवसर मिला। वे अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनकी भाषा, व्यवहार और व्यक्तित्व में जो सहजता है, वही उन्हें लाखों दिलों के करीब लाती है। रेडियो माध्यम पर उनकी आवाज सुनना श्रोताओं के लिए एक आत्मीय अनुभव रहा होगा।
0: लाइए आगे का हिस्सा मैं पढ़ लेती हूँ
1: जी।
0: लिखते हैं, यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि वे 24 मार्च को जापान स्थित बिहार फाउंडेशन के आमंत्रण पर जापान गए थे। यह केवल एक कलाकार की यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की प्रतिभा, भारतीय संस्कृति और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। बिहार से निकले कलाकार का जापान जैसे विकसित और अनुशासित देश में सम्मानित होना बताता है कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। यह बिहार के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का संदेश है कि मेहनत, धैर्य और लगन से विश्व स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है।
2: नीरज जी आगे लिखते हैं कि रेडियो जापान हिंदी सेवा ने इस इंटरव्यू को अपने कार्यक्रम में शामिल कर श्रोताओं की रुचि को समझने का परिचय दिया है। आज के समय में जब बहुत से रेडियो मंच केवल औपचारिक समाचारों तक सीमित हो जाते हैं, ऐसे में सांस्कृतिक, प्रेरणादायक और लोकप्रिय व्यक्तित्वों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ श्रोताओं को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। चेरी के देश से कार्यक्रम हमेशा से आत्मीयता और विविधता के लिए जाना जाता है और यह अंक उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है, एक श्रोता के रूप में मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम भारत और जापान के बीच मानवीय संबंधों को मजबूत करते हैं। इससे श्रोता केवल समाचार नहीं सुनते, बल्कि समाज, कला और संस्कृति की जीवंत धड़कन को महसूस करते हैं। कुल मिलाकर पंकज त्रिपाठी का ये साक्षात्कार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के लिए एक यादगार प्रस्तुति कहा जा सकता है। ये कार्यक्रम मनोरंजन, प्रेरणा और सांस्कृतिक संवाद का सुंदर संगम बनकर सामने आया।
2: नीरज जी, आपकी इस गहरी और विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हृदय से आभार। पंकज त्रिपाठी जी के साथ हुई भेंट वार्ता पर जयपुर से अंशुमन गुप्ता लिखते हैं, दिलचस्प साक्षात्कार, उनके जीवन के बारे में सुनना आनंददायक था।
0: इस भेंटवार्ता पर अनेक श्रोता मित्रों ने फेसबुक पर भी कमेंट किए हैं। प्रोमो वीडियो पर साधना गुप्ता लिखती हैं, बढ़िया भेंटवार्ता, उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। विजय कुमार ओझा ने दोनों को प्रणाम कहा है। उत्तराखंड से अनिल डोबरियाल पूछते हैं, क्या अब भी चेरी के देश से कार्यक्रम का प्रसारण होता है? मैं कभी रेडियो पर आपका कार्यक्रम सुनता था।
2: अनिल जी, चेरी के देश से कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार को अनवरत किया जाता है। हमारी वेबसाइट देखें, वहां भी ये एक सप्ताह तक उपलब्ध रहता है।
0: पंकज त्रिपाठी जी की भेंटवार्ता पर नेहा चुग ने फेसबुक पर लिखा है, उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा। मनीषा कुमार लिखती हैं, बहुत बढ़िया। और कुमकुम सरन ने भी इसे बहुत बढ़िया बताया। साथ ही लिखती हैं कि ये अच्छी बात है कि आपने बीच बीच में टोकने की बजाय पंकज जी को ही ज्यादा बोलने दिया, बहुत बढ़िया बोलते हैं, मजा आ गया।
1: मोनिता मिथा लिखती हैं, जापान की संस्कृति और परंपरा के बारे में पंकज जी के विचार जानकर आनंद आया। वहीं सूर्य नारायण बहादुर ने भी भेंटवार्ता को पसंद करते हुए लिखा है, जापान के बारे में उनकी पहले की यादें और अभी की आंखों देखी बातें बढ़िया लगी।
2: ओडिशा के सिंगा से सुरेश अग्रवाल जी का ये पत्र है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता के अंश सुनना निश्चय ही सुखद अनुभव रहा, लेकिन उनका सुझाव है कि इस प्रकार की भेंटवार्ताओं को शनिवार के प्रसारण में स्थान दिया जाए।
1: सुरेश जी, आप जैसे समर्पित श्रोता के सुझावों का स्वागत है, समय समय पर ऐसा किया भी जाता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी लिखते हैं, भारतीय सिनेमा जगत और टीवी की दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले पंकज जी मेरे भी फेवरेट हैं। उनके अभिनय की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आपने उनसे भेंटवार्ता करवाई, हृदय से आभारी हूँ। उनकी दूसरी जापान यात्रा इस बात का प्रमाण है कि वो हृदय से जापान वासियों को पसंद करते हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने साक्षात्कार में किया। उनके अनुभवों से ये फिर पुष्टि हुई कि जापानियों से अधिक विनम्र एवं मिलनसार विश्व में दूसरा कोई नहीं है। अनुशासित जीवन और अपनी सभ्यताओं को सजोए हुए देश के विकास में भूमिका निभाने वाले समस्त जापानियों को मेरा सलाम। जीवन में जब भी अवसर मिला जापान जरूर जाऊंगा।
2: सादिक आजमी साहब, जरूर आइए, जापान में आपका स्वागत है। और पंकज जी के साथ आज की भेंटवार्ता आप श्रोताओं को कैसी लगी जरूर बताइए, और पत्र लिखने के लिए लिंक कार्यक्रम के विवरण में शामिल है। लेकिन देखिए, फिलहाल घड़ी कर रही है इशारा कि जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और कामायनी सिंह को
0: और रोहिणी रमन को।
7: सायोनारा, नमस्कार।

0: अस्सलाम वालेकुम सामीन, पेशा खिदमत है प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं।
1: सामईन आदाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम जापानी खाने पकाए का। माह अप्रैल और मई में हम चंद सेहत बख्श खानों की तरकीब पेश कर रहे हैं। हम ऐसे खाने मुतारिफ कराएंगे जो रोजमर्रा तर्ज जिंदगी से मुतल्लिका बीमारियों से बचाव में मददगार होते हैं।
2: हमारा मौजू है हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून से बचाव। नमक का कम इस्तेमाल सेहत के इस मसले से बचाव में मददगार साबित होता है।
1: और एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारी खाना पकाने की माहिर मोहतरमा आकिको वातानाबे, जो आज हमें कम नमक से तैयार करदा एक खाने की तरकीब बता रही हैं।
3: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देस। क्यों त्सुकुरु नो वा गेनयेन टेरियाकी चिकन देस।
2: आदाब, मैं आकिको वातानाबे हूँ। आज हम कम नमक वाला तेरियाकी चिकन बनाना सीखेंगे। अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम तेरियाकी चिकन बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन आज की तरकीब में हम जायका ख़त्म किए बगैर नमक की निसफ मकदार इस्तेमाल करेंगे।
1: सबसे पहले चार अफराद के लिए तेरियाकी चिकन बनाने के अज्जा नोट फरमा लीजिए। आपको दरकार होगा 500 ग्राम मुर्गी का रान का गोश्त, यह हड्डी के बगैर मुर्गी के गोश्त के दो टुकड़े। ख्याल रहे कि यह गोश्त खाल समेत हो। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी थोड़े से पोटैटो स्टार्च यानी आलू के नशास्ता, और मुर्गी को पकाने के लिए 1 खाने का चम्मच सब्जियों के तेल की। मज़ीद दरकार होगा 50 मिलीलीटर सेब का रस, 1 और 1/2 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच सिरका और 5 ग्राम अदरक।
2: तो आइए बनाने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पकाने के लिए मुर्गी का गोश्त तैयार कीजिए। मुर्गी की एक रान को किसी कटिंग बोर्ड पर इस तरह रखिए कि खाल वाले सिम नीचे की जानेब हो। मुर्गी के रान के दरमियानी हिस्से में एक खलासा होता है, इसी जगह से काटते हुए रान के गोश्त के 2 टुकड़े बना लीजिए। दूसरे रान के भी इसी तरह 2 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह मुर्गी के 4 फ्ले बन जाएंगे। मुर्गी की रान का गोश्त निस्बतन सख्त होता है, लिहाजा अगर आप इसे इसी तरह पकाएंगे तो गोश्त सुखड़ जाएगा और इसे मुकम्मल तौर पर गलाना मुश्किल होगा। तो आइए पहले इन टुकड़ों की मोटाई बराबर कर लेते हैं।
1: छुरी को हर फिले के वस्त से उफकी गुजारते हुए अतराफ के सिरों तक इस तरह ले जाएं कि गोश्त का टुकड़ा दाएं और बाएं खुल जाए। ख्याल रखिए कि सिरों पर गोश्त को जुड़ा रहने दीजिए। गोश्त की मोटाई का अंदाज़ा लगाते रहिए और एक वक्त में एक जानिब से काटिए। गोश्त की मोटाई को एक जैसा बनाने के लिए कटाई का दुरुस्त अंदाज़ा कीजिए।
2: फ्लेम में शिगाफ लगाने के लिए छुरी को कटिंग बोर्ड के मुतवाजी रखिए और छुरी की धार गोश्त से गुजारते हुए अपनी जानिब लाइए। हमवार अंदाज से काटने के लिए छुरी की धार के नोक वाले अगले हिस्से को इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता काटें।
1: चिकन को इस अंदाज में काटने के बाद इसे खोलिए। फिले के दूसरे हिस्से को खोलने के लिए भी इसी तरह कट लगाइए। गोश्त के वस्ती हिस्से से एक तनासब के साथ अतराफ की जानिब काटने के तरीक़ाकार को जापानी में कानोन बिराकी कहा जाता है। यह नाम बुद्धा के मुजस्मे कानून को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिब्बों से निकला है। इन डिब्बों के दरवाजे इसी तरह वस्त से अतराफ में खुलते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी में इस अंदाज में खुलने वाले दरवाजों या काटने के इस तरीके को फ्रेंच डोर कहा जाता है। उर्दू में इस तरह दरवाजा खुलने को हम दरवाजे के पट वा करना कहते हैं।
2: अब चिकन फ्ले की सतह अपने साइज से दुगनी हो गई है और इसकी मोटाई पहले के मुकाबले में निसफ रह गई होगी। मुर्गी के चारों फ्ले इसी अंदाज में काट लीजिए। एक ट्रे में पोटैटो स्टार्च फैलाइए और फ्ले ऊपर रख दीजिए।
1: फ्ले की दोनों अतराफ पर अच्छी तरह पोटैटो स्टार्च लगाइए। एक पतली और हमवार तह के लिए काफी ज्यादा स्टार्च इस्तेमाल कीजिए और फिर हाथ से थपथपाकर इजाफी स्टार्च हटा दीजिए। इसके बाद तेरियाकी सॉस बनाने के लिए मसालों को मिला लीजिए। आज की तरकीब में सॉस को कलीदी हैसियत हासिल है। आमतौर पर तेरियाकी सॉस की तैयारी में सोया सॉस اور چینی جیسے بنیادی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سویا سوس میں سوڈیم کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم سویا سوس کی مقدار کو نصف کرتے ہوئے سیب کا رس، سرکہ اور کدوکش کی گئی ادرک استعمال کریں گے۔ بھرپور مہک کے ساتھ ان مسالوں سے ڈش کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور کم نمک سے بنی ایک بہت فائدہ مند ڈش تیار ہو جائے گی۔
2: ایک چھوٹے پیالے میں سویا سوس اور چینی ڈال کر ملائیے۔ اب اس میں سرکہ، کدوکش کی ہوئی ادرک اور سیب کا رس بھی ڈالیے اور یکجاں کرنے کے لیے اچھی طرح ہلائیں۔ اب سوس تیار ہے تو آئیے مرغی کو پکانے کا آغاز کرتے ہیں۔
1: تمام فلے ایک ساتھ پکانے کے لیے ایک بڑا فرائی پین استعمال کیجیے۔ پوٹیٹو سٹارچ میں تیل جذب ہو جاتا ہے، لہذا عمومی مقدار سے کچھ زیادہ تیل استعمال کیجیے۔ جب فرائی پین گرم ہو جائے تو اس میں اس طرح فلے رکھیے کہ کھال والا حصہ نیچے کی جانب ہو۔

0: खाने की ऊपरी सतह को सबसे पहले छूती और चखती है, लिहाजा अगर इसका जायका अच्छा होगा तो खाना भी मजेदार लगेगा। मोहतरमा वातानाबे एक और मशवरा भी देती हैं।
1: 一緒に摂るといい。カリウムがたくさん含まれている野菜をなるべく多くするようにしています。例えばジャガイモとか。
2: मैं कोशिश करती हूँ कि जिस कदर हो सके ऐसी सब्जियाँ और फल खाऊँ जिनमें पोटेशियम की ज़्यादा मिकदार मौजूद हो, क्योंकि पोटेशियम इजाफी नमक को ख़त्म करता है। आलू, सेब और केले इस किस्म की गज़ाइत के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया हैं।
0: आज की तरकीब का एक जुज सेब का रस था। अगर पोटेशियम को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जिस्म से इजाफी नमक को ख़त्म करता है।
2: सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करने के कई उम्दा तरीके हैं। जापान में खाना पकाना सिखाने वाली ऐसी क्लासेस और वेबसाइट्स बहुत मकबूल हैं, जहाँ खानों की वो तरकीब मुतारिफ़ कराई जाती हैं जिनमें सोडियम का इस्तेमाल कम हो। हमें उम्मीद है कि आप सब नमक का इस्तेमाल कम करने और सेहतमंद रहने की कोशिश कर सकते हैं।
0: सामने आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। आज हमने कम नमक वाला तेरियाकी चिकन बनाना सीखा। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ ही रहेंगे।
2: वसीमा, आज की डिश बहुत ही आसान थी और यकीनन मजेदार भी होगी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मज़ेदार तो हो सकती है क्योंकि इसमें ये जापान की सोफिया बड़ी मकबूल डिश है और बड़ी जल्दी बन जाती है। आप बनाती हैं ना?
2: बिल्कुल, अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आज की तरकीब की तरह कभी सेब का जूस इस्तेमाल नहीं किया मैंने।
0: वैसे सोफिया, बड़ा अच्छा आइडिया है कि नमक की कमी को सेहत बख्श अज्जा से पूरे करने का। वैसे सोचकर ही मुँह में पानी आ रहा था कि कितने मज़े की डिश होगी और ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी। भाई
2: वापस आ जाएं गुल ख्यालों की दुनिया से। आज की तरकीब में वातानाबे साहिबा ने पोटैटो स्टार्च इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तेरियाकी चिकन ऊपर से खस्ता होती है।
3: लेकिन सोफिया जी, अगर पोटैटो स्टार्च दस्तयाब ना हो तो हम आम कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो मैदा भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद ना हो तो चीनी की मिकदार को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जूस भी तो मीठा होता है ना।
0: क्या बात है, वैसे लो सोडियम लो शुगर। वैसे ख़वातीन, अब आपको अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखना चाहिए, नमक चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो ये बताइए कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है?
2: मैं काफ़ी खाने पकाती हूँ घर में, और उनमें सोया सॉस, मिसो, दाशी बुनियादी अज़ा होते हैं, और इन सब में होता है नमक। और कई डिशेज में तीनों का एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों पहले मैं करीबी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी तो अचानक मेरी नज़र पड़ी 50% कम सोडियम वाले सोया सॉस पर। मैंने उसे जल्दी से खरीद लिया और अब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ।
0: अच्छा,
2: मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नमक खाना ठीक नहीं है।
0: भाई, हमारे घर में भी सोया सॉस काफी इस्तेमाल होता है। आप मुझे ये बताएं कि मैं जाकर खुद खरीदूं कि आप ला कर देंगी मुझे?
2: नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगी, बल्कि मैं नाम भी दे दूंगी आपको, जो भी आपको समझ में है। लेकिन सोया सॉस और मिसो पेस्ट वगैरह लो सोडियम वाले अज्जा जो हैं वो भी गुल आजकल मिल जाते हैं हर जगह। बल्कि आजकल तो लो सोडियम नमक भी दस्तियाब है हर स्टोर पर।
3: यानी कम खाया पर खाया जरूर, चटखारा लिया और सेहत का ख्याल भी।
0: और मेरे ख्याल में हमें ना सिर्फ जापानी बल्कि आम खानों में भी नमक की मिकदार कम ही रखनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और जनाब लो सोडियम अज्जा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े।
4: जी सामीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, जिसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। चेरी के देश से कार्यक्रम में स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिच्चिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिच्चिवा नमस्कार।
2: सभी को रोहिणी रमन का भी नमस्कार। इस अंक में आपके पत्रों के उत्तर के साथ लेकर आए हैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता का भाग 2।

0: पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जो अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी और गहराई वाले किरदारों के लिए जाने जाते हैं।
1: बिहार दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पंकज जी 24 मार्च को जापान आए थे। पिछले अंक में हमने उनके साथ हुई भेंटवार्ता और प्रशंसकों के साथ साझा किए गए उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक निजी किस्से सुने थे। आइए उनके साथ भेंटवार्ता को आगे बढ़ाएं।
0: बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके गोपालगंज के बेलसार से निकलकर पंकज त्रिपाठी ने अपनी अभिनय यात्रा रंगमंच से शुरू की थी। पटना में रंगमंच करते हुए उन्होंने अपने हुनर को और तराशने का फैसला किया और भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाटक अकादमी में 3 साल तक पढ़ाई की।
2: लेकिन थिएटर में रुचि जागृत होने से पहले पंकज जी ने पटना में होटल प्रबंधन संस्थान से पढ़ाई की और फिर किसी होटल में काम भी किया। इसी बीच उनका रुझान थिएटर की तरफ होने लगा। जापान में उनके एक प्रशंसक का सवाल था कि आपको ये कब लगा कि अब पूरी तरह से रंगमंच से ही जुड़ना है? इस पर उन्होंने कहा,
3: मैं होटल में नौकरी कर रहा था, रात के ड्यूटी लगती थी 11 से सुबह 7 बजे तक। जब 6-8 महीना हो गया रात को जगना और सुबह दिन में सोना, तो मुझे लगा अब दिन वाला काम करना है। तो ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि मुझे एक दिन लगा कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है और कोई गो बैक नहीं है। ये धीरे धीरे धीरे धीरे हुआ कि यार मज़ा इस काम में आ रहा है तो यही करना है, ओवरनाइट नहीं हुआ है।
2: थिएटर करते हुए पंकज त्रिपाठी 1999 में पहली बार जापान आए थे। उस दौरान उन्हें जापानी अभिनेताओं और कलाकारों के साथ मिलकर नाटक करने का मौका मिला था और करीब 1 महीने तक यहाँ वर्कशॉप भी की थी। युवा पंकज के मन पर जापानी रहन सहन का खासा प्रभाव पड़ा था। हमने उनसे पूछा कि उस पहली यात्रा ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया।
4: जब हम घूमते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग शहरों को देखते हैं, अलग अलग देशों को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक सिविक सेंस के मामले में टोक्यो बहुत, जापान बहुत आगे है। एक नागरिक जो है, मैं देखता हूँ कि यहाँ ऑफिस के आसपास के इलाके, ऑफिस के कर्मचारी टॉप बॉस से लेकर और नीचे तक सब मिल के साथ में सफाई करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑफिस को या अपने घर के आसपास को भी साफ रखें। तो जो जो एक अनुशासन है यहाँ, वो हमारे लिए सीखने योग्य है। हम लोग हिंदुस्तान में उसमें थोड़े लैकिंग कर लेते हैं। हमें लगता है ये उसकी ड्यूटी है, वो करेगा। अगर हमें दिख रहा है कुछ वहाँ गंदा है तो हम भी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो एक नागरिक जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए, वो यहाँ बहुत प्रखर रूप से दिखती है।
2: पंकज जी फिल्मों से जुड़े हैं तो जाहिर है कोई पसंदीदा जापानी फिल्म या निर्देशक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जवाब ने हमें थोड़ा अचंभित कर दिया। वे कहते हैं,
4: नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मैं ज़्यादातर लाइव परफॉर्मेंस ही देखता हूँ। तो मैं हिंदी सिनेमा भी बहुत कम देखा हूँ, 40-50 देखा होगा, 60 मैक्सिमम। तो मुझे सिनेमा का यहाँ एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। बाकी खाने का है, कल्चर का है, परफॉर्मिंग आर्ट का है, बट सिनेमा का, जापानी सिनेमा का एक्सपोजर नहीं है मेरे पास।
2: पंकज जी ने बताया कि उन्होंने जापान की परफॉर्मिंग आर्ट देखी है और जापान की कई रंगमंच कलाएं भी हैं, जैसे राकुगो या काबुकी। हमने उनसे सवाल किया कि क्या इनमें से कोई देखने का मौका मिला, तो वे बोले,
4: पहले काबुकी देखा हूँ, मैंने काबुकी का वर्कशॉप भी किया हुआ है। कल काबुकी थिएटर मुझे दिखा बाहर से, वो सेंट्रल टोक्यो में, तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो मेरी पत्नी नहीं देखी है तो उन्हें दिखाऊंगा। बाकी मैं यहाँ के कलाओं के बारे में काफ़ी अध्ययन किया हूँ, देखा हूँ। हमारे NSD में जब हम पढ़ते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, तो वहाँ भी कल्चरल एक्सचेंज के तहत काबुकी एक्सपर्ट आते थे एक वर्कशॉप लेने के लिए, तो वो सब किया है। और ये बहुत अच्छी बात है जापान में कि जितना मॉडर्न है, टेक्निकली विकसित है, उतना ही ये लोग अपनी संस्कृति को, अपनी कलाओं को, लोक कलाओं को प्रिजर्व करके बचा के रखे हैं और अगली जनरेशन को दे रहे हैं। तो फिर तो वो फ्लरिश करेंगे ही वो कलाएं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलाओं को बचा के रखें, उनको अगली पीढ़ी को दें।
2: काबुकी जापान की 400 साल पुरानी रंगमंच कला है, जिसमें नाटक, संगीत और नृत्य सभी कलाओं का समावेश है। पंकज जी से हमने पूछा कि काबुकी में ऐसी क्या खास बात है जिसने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। खास तौर से जिन लोगों ने कभी काबुकी नहीं देखी वे जानना चाहेंगे कि इसमें उन्हें क्या पसंद आया।
4: बिल्कुल, आपके शहर में आपको जहाँ भी मौका मिले ज़रूर देखें काबुकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक प्राचीन परंपरा है यहाँ की। उसके मूवमेंट इतने डेलिकेट होते हैं और उसके कलाकार को ट्रेंड होने में, प्रिपेयर्ड परफॉर्म करने में काफ़ी साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि दो एक महीने की ट्रेनिंग में आप परफॉर्म करने लगो। तो जितना उसमें संतुलन और मूवमेंट के ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसमें ऑफकोर्स यहाँ की एक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है वो, तो काबुकी एक्टर को ट्रेंड होने में, काबुकी परफॉर्मर को बहुत साल लगते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, भारत में भी ऐसी कलाएं हैं, दक्षिण भारत में मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुड़ियाट्टम, जिनको एक परफॉर्मर को ट्रेंड करने में, उसको स्टेज पे आने में 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो ये कलाएं हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन को दिखाती हैं कि कैसे इवॉल्व होते हैं हम। तो कमाल का आर्ट है, आपको जब भी मौका लगे आपके शहर में कहीं भी काबुकी परफॉर्मेंस पता हो ज़रूर जाएं और देखें।
2: आज भारत में रंगमंच हो या जापान का काबुकी, लोगों की रुचि इन कलाओं में कम होती जा रही है। काबुकी कलाकारों का भी कहना है कि इसको जीवित रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इस बारे में हमने पंकज जी से उनकी राय जानी।
4: ऑडियंस अगर लाइव परफॉर्मेंस देखेगी ना, एक नई ऑडियंस, बहुत लोग हैं जो स्टेज में थिएटर में नहीं गए आज तक। और सिनेमा एक किस्म से जादू था, पर्दे पे एक दुनिया क्रिएट होती है और देखते हैं, पॉपुलर मीडियम है। एक सिनेमा बनेगा तो एक साथ 1000 जगहों पे देख सकते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस एक ही जगह जहाँ हो रहा है वहीं जाके देख सकते हैं उसका। तो एक समय आएगा जब ये स्क्रीन फटीग हो जाएगा, होने लगा है। आप कितना स्क्रीन में देखेंगे, इंटरटेनमेंट है, समाचार है, सोशल मीडिया है, फिल्में हैं। तो एक समय के बाद आदमी को रियल कनेक्शन चाहिए कि मैं कुछ लाइव देखूं, मैं जीवंत देखूं, मैं जो देख रहा हूं वो इसी समय घटित हो रहा है, वो 6 महीना घटित होके और उसको कैमरे में कैद करके नहीं दिखा जा रहा है। तो आने वाले समय में लाइव आर्ट लोग देखने जाएंगे और बहुत भीड़ होगी और उसका सुख समझ में आएगा कि यार इसका आनंद क्या है। वो सजीव लाइव कनेक्शन अलग होता है ना, कि आपके सामने एक कलाकार परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई कैमरा नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। सही है तो वही है, गलतियां भी हो रही हैं तो आपके सामने हो रही हैं। तो स्क्रीन फटीग एक दिन आएगा और लोग वापस आ गया है। इनफैक्ट आप ब्रॉडवे जाके देखें जो होते हैं, वहाँ पर कितने महंगे टिकट हैं और हाउसफुल रहते हैं, महीनों तक टिकट नहीं मिलती है। तो मैंने खुद अभी एक प्ले प्रोड्यूस किया है मेरी पत्नी ने बॉम्बे में, लाइलाज, और उसके शोज हो रहे हैं। समय लगा, कभी उचित हुआ तो हम जापान भी आएंगे हिंदी ऑडियंस के लिए शो करने। 30 लोगों का ट्रूप है, लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव म्यूजिक है, लाइव गाते हैं, लाइव बजाते हैं म्यूजिशियन। तो लाइव आर्ट का कोई तुलना ही नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कहीं भी कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रही है थोड़ी प्रोफेशनल टीम की, आप जाएं देखें और आप उसके मुरीद हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे और आप बार बार देखेंगे।
2: उनके लिए कला के मायने क्या हैं? टोक्यो के एक प्रशंसक के सवाल पर पंकज जी ने कहा,
5: और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिसके भीतर कला है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टेज ही मिले। आर्टिस्टिक अप्रोच आप जीवन में भी रख सकते हैं, खाना बनाने में और खाना खाने में भी आर्ट हो सकता है। तो आर्ट के लिए, आर्ट कोई जीवन से बहुत अलग की चीज नहीं है, उसका अप्रोच, उसका सेंस आप लाइफ में भी रख सकते हैं। और आर्ट का पर्पस ही है आदमी को अच्छा आदमी बनाना। आर्ट, पोएट्री, कल्चर, इनका क्या पर्पस है जीवन में? हम इंजीनियरिंग, मेडिकल का काम है जीवन को आसान बनाना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ से वहाँ जल्दी जाएंगे, मेडिसिन में डेवलप करेंगे तो हम बीमारियाँ दूर कर लेंगे। बट ये यहाँ से वहाँ जल्दी जाना और बीमारियों को भगाना किसके लिए? जीवन के लिए। फिर जीवन किसके लिए? आर्ट के लिए।
1: पंकज जी के साथ बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसमें हम उनके फिल्म करियर के बारे में जानेंगे। और अब समय हो चला है श्रोताओं को हमारी फ्रीक्वेंसी बताने का, तो फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
6: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: चेरी के देश से मैं आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ झारखंड जमशेदपुर से चिन्मय महतो जी का। लिखा है, आओ पकाएं जापानी खाना में टेम्पुरा की बहुत ही सरल विधि और सहज उपाय बताने के लिए धन्यवाद। अब ये पकौड़े मैं स्वयं बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा, पर कहाँ तक सफल हो पाऊँगा पता नहीं। चिन्मय जी ने एक निजी उपलब्धि साझा करते हुए लिखा है, मेरे मिनी रेडियो संग्रहालय पर दिल्ली दूरदर्शन ने लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें मेरा साक्षात्कार भी लिया। मैंने रेडियो जापान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक रेडियो श्रोता होने पर इतना बड़ा सम्मान मिलना काफी गर्व की बात है।
1: चिन्मय जी, आप जैसे रेडियो प्रेमी श्रोता को ये सम्मान मिलना वाकई हमारे लिए भी गर्व और खुशी की बात है। और देखिए, बिहार आरा से रामकुमार नीरज जी का ये लंबा सा पत्र है। 19 अप्रैल को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता को अत्यंत सराहनीय कदम बताया है। आगे लिखा है, ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा और भारतीय कलाकारों की उपस्थिति दिखाई देती है, तो ये हम सभी हिंदी श्रोताओं के लिए गर्व का विषय बन जाता है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें पंकज त्रिपाठी जैसे सरल, प्रतिभाशाली और जमीन से जुड़े कलाकार के विचार सुनने का अवसर मिला। वे अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनकी भाषा, व्यवहार और व्यक्तित्व में जो सहजता है, वही उन्हें लाखों दिलों के करीब लाती है। रेडियो माध्यम पर उनकी आवाज़ सुनना श्रोताओं के लिए एक आत्मीय अनुभव रहा होगा।
0: लाइए आगे का हिस्सा मैं पढ़ लेती हूँ
1: जी।
0: लिखते हैं, यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि वे 24 मार्च को जापान स्थित बिहार फाउंडेशन के आमंत्रण पर जापान गए थे। यह केवल एक कलाकार की यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की प्रतिभा, भारतीय संस्कृति और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। बिहार से निकले कलाकार का जापान जैसे विकसित और अनुशासित देश में सम्मानित होना बताता है कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। यह बिहार के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का संदेश है कि मेहनत, धैर्य और लगन से विश्व स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है।
2: नीरज जी आगे लिखते हैं कि रेडियो जापान हिंदी सेवा ने इस इंटरव्यू को अपने कार्यक्रम में शामिल कर श्रोताओं की रुचि को समझने का परिचय दिया है। आज के समय में जब बहुत से रेडियो मंच केवल औपचारिक समाचारों तक सीमित हो जाते हैं, ऐसे में सांस्कृतिक, प्रेरणादायक और लोकप्रिय व्यक्तित्वों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ श्रोताओं को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। चेरी के देश से कार्यक्रम हमेशा से आत्मीयता और विविधता के लिए जाना जाता है और यह अंक उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है, एक श्रोता के रूप में मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम भारत और जापान के बीच मानवीय संबंधों को मजबूत करते हैं। इससे श्रोता केवल समाचार नहीं सुनते, बल्कि समाज, कला और संस्कृति की जीवंत धड़कन को महसूस करते हैं। कुल मिलाकर पंकज त्रिपाठी का ये साक्षात्कार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के लिए एक यादगार प्रस्तुति कहा जा सकता है। ये कार्यक्रम मनोरंजन, प्रेरणा और सांस्कृतिक संवाद का सुंदर संगम बनकर सामने आया।
2: नीरज जी, आपकी इस गहरी और विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हृदय से आभार। पंकज त्रिपाठी जी के साथ हुई भेंट वार्ता पर जयपुर से अंशुमन गुप्ता लिखते हैं, दिलचस्प साक्षात्कार, उनके जीवन के बारे में सुनना आनंददायक था।
0: इस भेंटवार्ता पर अनेक श्रोता मित्रों ने फेसबुक पर भी कमेंट किए हैं। प्रोमो वीडियो पर साधना गुप्ता लिखती हैं, बढ़िया भेंटवार्ता, उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। विजय कुमार ओझा ने दोनों को प्रणाम कहा है। उत्तराखंड से अनिल डोबरियाल पूछते हैं, क्या अब भी चेरी के देश से कार्यक्रम का प्रसारण होता है? मैं कभी रेडियो पर आपका कार्यक्रम सुनता था।
2: अनिल जी, चेरी के देश से कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार को अनवरत किया जाता है। हमारी वेबसाइट देखें, वहां भी ये एक सप्ताह तक उपलब्ध रहता है।
0: पंकज त्रिपाठी जी की भेंटवार्ता पर नेहा चुग ने फेसबुक पर लिखा है, उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा। मनीषा कुमार लिखती हैं, बहुत बढ़िया। और कुमकुम सरन ने भी इसे बहुत बढ़िया बताया। साथ ही लिखती हैं कि ये अच्छी बात है कि आपने बीच बीच में टोकने की बजाय पंकज जी को ही ज़्यादा बोलने दिया, बहुत बढ़िया बोलते हैं, मज़ा आ गया।
1: मोनिता मिथा लिखती हैं, जापान की संस्कृति और परंपरा के बारे में पंकज जी के विचार जानकर आनंद आया। वहीं सूर्य नारायण बहादुर ने भी भेंटवार्ता को पसंद करते हुए लिखा है, जापान के बारे में उनकी पहले की यादें और अभी की आँखों देखी बातें बढ़िया लगीं।
2: ओडिशा के सिंगा से सुरेश अग्रवाल जी का ये पत्र है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता के अंश सुनना निश्चय ही सुखद अनुभव रहा, लेकिन उनका सुझाव है कि इस प्रकार की भेंटवार्ताओं को शनिवार के प्रसारण में स्थान दिया जाए।
1: सुरेश जी, आप जैसे समर्पित श्रोता के सुझावों का स्वागत है, समय समय पर ऐसा किया भी जाता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी लिखते हैं, भारतीय सिनेमा जगत और टीवी की दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले पंकज जी मेरे भी फेवरेट हैं। उनके अभिनय की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आपने उनसे भेंटवार्ता करवाई, हृदय से आभारी हूँ। उनकी दूसरी जापान यात्रा इस बात का प्रमाण है कि वो हृदय से जापान वासियों को पसंद करते हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने साक्षात्कार में किया। उनके अनुभवों से ये फिर पुष्टि हुई कि जापानियों से अधिक विनम्र एवं मिलनसार विश्व में दूसरा कोई नहीं है। अनुशासित जीवन और अपनी सभ्यताओं को सजोए हुए देश के विकास में भूमिका निभाने वाले समस्त जापानियों को मेरा सलाम। जीवन में जब भी अवसर मिला जापान जरूर जाऊंगा।
2: सादिक आजमी साहब, जरूर आइए, जापान में आपका स्वागत है। और पंकज जी के साथ आज की भेंटवार्ता आप श्रोताओं को कैसी लगी जरूर बताइए, और पत्र लिखने के लिए लिंक कार्यक्रम के विवरण में शामिल है। लेकिन देखिए, फिलहाल घड़ी कर रही है इशारा कि जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और कामायनी सिंह को
0: और रोहिणी रमन को।
7: सायोनारा, नमस्कार, नमस्कार।

0: अस्सलाम वालेकुम सामीन, पेशा खिदमत है प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं।
1: सामाईन आदाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम जापानी खाने पकाए का। माह अप्रैल और मई में हम चंद सेहत बख्श खानों की तरक्की पेश कर रहे हैं। हम ऐसे खाने मुतारिफ कराएंगे जो रोजमर्रा तर्ज जिंदगी से मुतल्लिका बीमारियों से बचाव में मददगार होते हैं।
2: हमारा मौजू है हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून से बचाव। नमक का कम इस्तेमाल सेहत के इस मसले से बचाव में मददगार साबित होता है।
1: और एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारी खाना पकाने की माहिर मोहतरमा आकिको वातानाबे, जो आज हमें कम नमक से तैयार करदा एक खाने की तरकीब बता रही हैं।
3: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देस। क्यों त्सुकुरु नो वा गेनयेन टेरियाकी चिकन देस।
2: आदाब, मैं आकिको वातानाबे हूँ। आज हम कम नमक वाला तेरेयाकी चिकन बनाना सीखेंगे। अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम तेरेयाकी चिकन बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन आज की तरकीब में हम जायका ख़त्म किए बगैर नमक की निसफ मकदार इस्तेमाल करेंगे।
1: सबसे पहले चार अफराद के लिए तेरेयाकी चिकन बनाने के अज्जा नोट फरमा लीजिए। आपको दरकार होगा 500 ग्राम मुर्गी का रान का गोश्त, यह हड्डी के बगैर मुर्गी के गोश्त के दो टुकड़े। ख्याल रहे कि ये गोश्त खाल समेत हो। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी थोड़े से पोटैटो स्टार्च यानी आलू के नशास्ता, और मुर्गी को पकाने के लिए एक खाने का चम्मच सब्जियों के तेल की। मज़ीद दरकार होगा 50 मिलीलीटर सेब का रस, 1 और 1/4 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच सिरका और 5 ग्राम अदरक।
2: तो आइए बनाने का आगाज करते हैं। सबसे पहले पकाने के लिए मुर्गी का गोश्त तैयार कीजिए। मुर्गी की एक रान को किसी कटिंग बोर्ड पर इस तरह रखिए कि खाल वाले सिमत नीचे की जानब हो। मुर्गी के रान के दरमियानी हिस्से में एक खलासा होता है, इसी जगह से काटते हुए रान के गोश्त के 2 टुकड़े बना लीजिए। दूसरे रान के भी इसी तरह 2 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह मुर्गी के 4 फ्ले बन जाएंगे। मुर्गी की रान का गोश्त निस्बतन सख्त होता है, लिहाजा अगर आप इसे इसी तरह पकाएंगे तो गोश्त सुखड़ जाएगा और इसे मुकम्मल तौर पर गलाना मुश्किल होगा। तो आइए पहले इन टुकड़ों की मोटाई बराबर कर लेते हैं।
1: छुरी को हर फिले के वस्त से उफकी गुजारते हुए अतराफ के सिरों तक इस तरह ले जाएं कि गोश्त का टुकड़ा दाएं और बाएं खुल जाए। ख्याल रखिए कि सिरों पर गोश्त को जुड़ा रहने दीजिए। गोश्त की मोटाई का अंदाज़ा लगाते रहिए और एक वक्त में एक जानिब से काटिए। गोश्त की मोटाई को एक जैसा बनाने के लिए कटाई का दुरुस्त अंदाज़ा कीजिए।
2: फ्लेम में शिगाफ लगाने के लिए छुरी को कटिंग बोर्ड के मुतवाजी रखिए और छुरी की धार गोश्त से गुजारते हुए अपनी जानिब लाइए। हमवार अंदाज से काटने के लिए छुरी की धार के नोक वाले अगले हिस्से को इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता काटें।
1: चिकन को इस अंदाज में काटने के बाद इसे खोलिए। फिले के दूसरे हिस्से को खोलने के लिए भी इसी तरह कट लगाइए। गोश्त के वस्ती हिस्से से एक तनासब के साथ अतराफ की जानिब काटने की तरीक़ाकार को जापानी में कानोन बिराकी कहा जाता है। यह नाम बुद्धा के मुजस्मे कानून को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिब्बों से निकला है। इन डिब्बों के दरवाजे इसी तरह वस्त से अतराफ में खुलते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में इस अंदाज में खुलने वाले दरवाज़ों या काटने के इस तरीके को फ्रेंच डोर कहा जाता है। उर्दू में इस तरह दरवाज़ा खुलने को हम दरवाजे के पट वा करना कहते हैं।
2: अब चिकन फ्ले की सतह अपने साइज से दुगनी हो गई है और इसकी मोटाई पहले के मुकाबले में निसफ रह गई होगी। मुर्गी के चारों फ्ले इसी अंदाज में काट लीजिए। एक ट्रे में पोटैटो स्टार्च फैलाइए और फ्ले ऊपर रख दीजिए।
1: फ्ले की दोनों अतराफ पर अच्छी तरह पोटैटो स्टार्च लगाइए। एक पतली और हमवार तह के लिए काफी ज्यादा स्टार्च इस्तेमाल कीजिए और फिर हाथ से थपथपाकर इजाफी स्टार्च हटा दीजिए। इसके बाद तेरियाकी सॉस बनाने के लिए मसालों को मिला लीजिए। आज की तरकीब में सॉस को कलीदी हैसियत हासिल है। आमतौर पर तेरियाकी सॉस की तैयारी में सोया सॉस اور چینی جیسے بنیادی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سویا سوس میں سوڈیم کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم سویا سوس کی مقدار کو نصف کرتے ہوئے سیب کا رس، سرکہ اور کدوکش کی گئی ادرک استعمال کریں گے۔ بھرپور مہک کے ساتھ ان مسالوں سے ڈش کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور کم نمک سے بنی ایک بہت فائدہ مند ڈش تیار ہو جائے گی۔
2: ایک چھوٹے پیالے میں سویا سوس اور چینی ڈال کر ملائیے، اب اس میں سرکہ، کدوکش کی ہوئی ادرک اور سیب کا رس بھی ڈالیے اور یکجاں کرنے کے لیے اچھی طرح ہلائیں۔ اب سوس تیار ہے تو آئیے مرغی کو پکانے کا آغاز کرتے ہیں۔
1: تمام فلے ایک ساتھ پکانے کے لیے ایک بڑا فرائی پین استعمال کیجیے۔ پوٹیٹو سٹارچ میں تیل جذب ہو جاتا ہے، لہذا عمومی مقدار سے کچھ زیادہ تیل استعمال کیجیے۔ جب فرائی پین گرم ہو جائے تو اس میں اس طرح فلے رکھیے کہ کھال والا حصہ نیچے کی جانب ہو۔

0: सामिन आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। आज हमने कम नमक वाला टेरियाकी चिकन बनाना सीखा। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ ही रहेंगे।
1: वसीमा, आज की डिश बहुत ही आसान थी और यकीनन मज़ेदार भी होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मज़ेदार तो हो सकती है क्योंकि इसमें ये जापान की सोफिया बड़ी मकबूल डिश है और बड़ी जल्दी बन जाती है। आप बनाती हैं ना?
1: बिल्कुल, अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आज की तरकीब की तरह कभी सेब का जूस इस्तेमाल नहीं किया मैंने।
0: वैसे सोफिया, बड़ा अच्छा आइडिया है कि नमक की कमी को सेहत बश अज्जा से पूरे करने का। वैसे सोचकर ही मुँह में पानी आ रहा था कि कितने मज़े की डिश होगी और ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी। भाई
1: वापस आ जाएं गुल ख्यालों की दुनिया से। आज की तरकीब में वदनाबे साहब ने पोटैटो स्टार्च इस्तेमाल किया जिसकी वजह से टेरियाकी चिकन ऊपर से खस्ता होती है।
2: लेकिन सोफिया जी, अगर पोटैटो स्टार्च दस्तयाब ना हो तो हम आम कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो मैदा भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद ना हो तो चीनी की मकदार को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जूस भी तो मीठा होता है ना।
0: क्या बात है, वैसे लो सोडियम लो शुगर। वैसे ख़वातीन, अब आपको अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखना चाहिए, नमक चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो ये बताइए कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है?
1: मैं काफ़ी खाने पकाती हूँ घर में, और इनमें सोया सॉस, मिसो, दाशी बुनियादी अज्जा होते हैं, और इन सब में होता है नमक। और कई डिशेज में तीनों का एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नमक की मकदार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों पहले मैं करीबी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी तो अचानक मेरी नज़र पड़ी 50% कम सोडियम वाले सोया सॉस पर। मैंने उसे जल्दी से खरीद लिया और अब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ।
0: अच्छा,
1: मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नमक खाना ठीक नहीं है।
0: भाई, हमारे घर में भी सोया सॉस काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप मुझे ये बताएं कि मैं जाकर खुद खरीदूँ कि आप ला कर देंगी मुझे?
1: नहीं नहीं, मैं आपको दे दूँगी, बल्कि मैं नाम भी दे दूँगी आपको, जो भी आपको समझ में। लेकिन सोया सॉस और मिसो पेस्ट वगैरह लो सोडियम वाले अज्जा जो हैं वो भी गुल आजकल मिल जाते हैं हर जगह, बल्कि आजकल तो नमक लो सोडियम नमक भी दस्तियाब है हर स्टोर पर।
2: यानी कम खाया पर खाया ज़रूर, चटखारा लिया और सेहत का ख्याल भी।
0: और मेरे ख्याल में हमें ना सिर्फ जापानी बल्कि आम खानों में भी नमक की मकदार कम ही रखनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और जनाब लो सोडियम अज्जा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े।
3: जी सामीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, जिसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।